ज्वाला सी चलती है आंखों में जिसके भी दिल में तेरा नाम है परवाह है क्या उसका आरंभ कैसा और कैसा परिणाम है धरती अंबर सितारे उसकी नजरें उतारे धर भी उसे धरारे जिसकी रखवालिया रे करता साया तेरा हे देवा श्री गणेशा Has your name in his heart, has that fire in his eyes. He isn't worried about how his start is or what the end results are. The earth, sky, stars, they keep him out of troubles. Even fear is afraid of him, whose protector your shadow is, O Ganesha.

0: जख्म बहुत गहरे हैं, जो दिल पे दिखाऊं कैसे। लोग वजह पूछते हैं इन आंसुओं की, आंखों में छुपाऊं कैसे।
1: One dream, one mission. Your voice, your vision. Radio Jagriti, 102.7 FM.

ताम श्रीशैलस्थलवासिनीं भगवतीं श्रीमातरं भावये ॐ श्री दुर्गा लक्ष्मी सरस्वतीभ्यो नमः।

0: प्रेम से बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। सीताराम, आई एम पंडित शिवानंद राधे महाराज आस्किंग यू द व्यूअर्स एंड द लिसनर्स ऑफ रेडियो एंड टीवी जागृति टू जॉइन अस एवरी वेंसडे फ्रॉम 5 to 6 PM वेयर वी स्पीक अबाउट द ग्लोरीज ऑफ श्री कृष्ण भगवान ऑन आवर प्रोग्राम कृष्ण अर्पणम। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।
1: Discover the vibrant world of the Fab India Expo, your gateway to exquisite crafts, fashion, and home decor. Dive into exclusive deals and experience the essence of India all under one roof. Visit the Fab India Expo opposite the Medford gas station in Shaguanis and take home something special today.

0: प्रेम से बोले श्री कृष्ण भगवान की जय सीताराम आई एम पंडित शिवानंद राधे महाराज आस्किंग यू द व्यूअर्स एंड द लिसनर्स ऑफ रेडियो एंड टीवी जागृति टू जॉइन अस एवरी वेंसडे फ्रॉम 5 to 6 PM वेयर वी स्पीक अबाउट द ग्लोरीज ऑफ श्री कृष्ण भगवान ऑन अवर प्रोग्राम कृष्ण अर्पणम बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय
1: Discover the vibrant world of the Fab India Expo, your gateway to exquisite crafts, fashion, and home decor. Dive into exclusive deals and experience the essence of India all under one roof. Visit the Fab India Expo opposite the Medford gas station in Chaguanas and take home something special today.
2: You are listening to the best of the best only on Radio Jagriti 102.7 FM.

प्रेम से बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। सीताराम, आई एम पंडित शिवानंद राधे महाराज आस्किंग यू द व्यूअर्स एंड द लिसनर्स ऑफ रेडियो एंड टीवी जागृति टू जॉइन अस एवरी वेंसडे फ्रॉम 5 to 6 PM वेर वी स्पीक अबाउट द ग्लोरीज ऑफ श्री कृष्ण भगवान ऑन अवर प्रोग्राम कृष्ण अर्पणम। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।

ये एक जादू भरी आवाज जगजीत सिंह, जिन्हें मैं अक्सर आप जानते हैं, आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा कि मैं इन्हें हमेशा गजलजीत सिंह कहता हूँ। इनकी आवाज में एक अजीब सोज है, एक अजीब दर्द है, और बल्कि ऐसे लगता है कि फाये की तरह ये दर्द को सहलाते रहते हैं अपनी आवाज से। और ये बात कमाल है कि ये माजी की तरफ भी हैं और मुस्तकबिल की तरफ हैं। आप देख रहे हैं आवाज़ फ्यूचर की है, अल्फाज माजी के हैं।

0: अच्छा जानती हैं गजल शब्द का मतलब क्या है?
1: कादिर आजाद, ये एक अरबी शब्द है। गजल यानी कि टॉकिंग टू वन्स बिलवेड, अपने माशूका से बातें करना। वैसे गजल पर से मैं कुछ अर्ज करना चाहूंगा आपकी इजाजत के साथ। शुक्रिया। अगर तुम ना होते तो तुझे गजल कौन कहता, अगर तुम ना होते तो तुझे गजल कौन कहता, तेरे चेहरे को कवल कौन कहता। ये तो करिश्मा है मोहब्बत का, वरना पत्थरों को ताजमहल कौन कहता।
2: जगजीत जी विद वन ऑफ साहिर लुधियानवी साहब्स मोस्ट ब्यूटीफुल थॉट्स।

योग्यं सुखसंपदां आत्मतत्व प्रबोधाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते। लक्ष्मी करोतु कल्याणं आरोग्यं सुखसंपदां मम शत्रु विनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते।

0: लक्ष्मीपते पाहि मां, लक्ष्मीपते पाहि मां।
1: भक्तजनों रामायण सुनि रहे हैं।